0: Swimming pool.
1: School swimming pool تو. آه. آه ويا أرتو تسمع بعد. تو بكرة نيجي swimming.
0: كوكتا.
1: كوكتا.
0: كيف هو صرتو عندي دكتور؟
1: مزاي ترديتك آه.
0: يا مزاي
1: تدي. آه. تاتين سالك تسمع شوية.
0: بيج ما أوكي.
1: هيك تو كلوب في تويس شجع أنا شو زين أي؟
0: نعم.
1: بس هاي دي خانة يا بكرة. تو سايكل دو سكويز يا.
2: 这是罕萨山谷里最热闹的巴扎，各式果汁批发商在此聚集。
3: We check it. How is the taste? How is the quality of the product?
2: 亲自品尝挑选最佳风味是第一步。
3: The food is more difficult than the stones. Chinese would like.
1: कैसे हैं भाई ये इसकी क्या प्राइस है मेरे भाई कुछ कर लें कुछ दे देख लें थोड़ा सा कोई हो सकता है अगर हम आपसे
2: 讨价还价控制成本是第二步
3: I am nervous because it's not a small business
1: थोड़ा महंगा बता रहे हैं
4: कम से कम ना पड़ेगा
1: यार देखना बस उसी चीज पे लगे हुए हैं थोड़ा सा कम कर लें
4: उसका वो खरीदी
1: नहीं है रिटेल में देखा ना इसमें कम करें ये मेरे ख्याल में 3,900 जो है ना
4: नो प्रॉफिट नो लॉस आपके साथ
1: थैंक यू
4: अल्लाह हाफिज़
1: बहुत शुक्रिया मेरे पे ओके बहुत शुक्रिया आपसे काम करने का इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा काम करेंगे
5: इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें भी खुशी हुई
1: प्लीज भेज
2: 与供货商的合作协议顺利签署
3: Agreement with supplier and then.
2: 两箱芒果汁的样品摆上爱民的柜台。帕米尔高原的风可以拂去连日奔波的疲惫。
3: It's on the roof of the world. I like photography. You can see different signs of clouds. You can see the big mountains. You can see the greenery, the cool breeze. It makes you feel relaxed inwardly. Because in this beautiful nature, no, I don't worry about anything. I don't feel like that I am far away from my home.I feel like my home here in Tashkurwan.
6: 我拿两瓶这个吧。
1: 你看一下。
4: 哦，挺好喝的。
7: 芒果汁。
2: 爱民的芒果汁颇受欢迎。
1: 啊，对。
8: 这是我们国家的 next time 的海南包。中巴有一吗？不是我真脆皮。
2: 当暮色降临。塔县的夜市也苏醒过来，巴基斯坦商贩在此云集，琳琅商品在灯火中流转。当然，这里也少不了爱民的摊位，他的商业拓展延续着父辈30多年前开启的跨文化纽带。
3: The road, which is Silk Road, our Karakoram Highway, which was built in 1960s with the help of Chinese, and now becoming.CPEC. I will say that my father and my uncle are ambassador of CPEC. Think about this 3 years before. The future of cross-border trade is very bright. I want to bring more beautiful things from Pakistan to Xinjiang in the future.
2: 爱民的家族见证了这条古老商路的时代变迁。而1650公里以外，一位新的探索者的故事才刚刚开始。
9: Why did you not do your homework? So remember, when we want to say we go somewhere.
2: 英语教师、
9: okay.
2: 这份大众点评上淘来的工作，是陆可落脚新疆的敲门砖。
9: We're gonna pick someone from the class. It's gonna be a country, yeah? Country.